कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप, मैं सुचिष्मिता आप सबके साथ 107.9 IRFM रेनबो दिल से दिल तक पर कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। और जो है 10:04 स्टूडियो की घड़ी में वक्त रहूंगी पूरे 11 बजे तक आपके साथ, और करेंगे हम ढेर सारी बातें, साथ में सुनेंगे प्यारे प्यारे नगमे जो दिल के करीब हो आपके और मेरे। साथ में बातों का सिलसिला भी नहीं रुकेगा, लेकिन नगमे तो ज़रूरी हैं, गाने तो ज़रूरी हैं, जो कानों को अच्छे लगते हैं, दिल को अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं ऐसे गाने। चलिए रुक करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

0: डॉक्टर का? समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
1: मेरी भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: नॉट लिसनिंग टू
0: यू। कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: नॉट लिसनिंग टू यू।
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: ओके, आई एम नॉट विद हर।
0: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके, दैट्स इट।

10:05 स्टूडियो की घड़ी में वक्त और कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में शुचिश्मिता आप सबके साथ 107.8 AIR FM रेनबो पे सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को आप। और आज नॉन स्टॉप गपशप पे हम बात करेंगे छुट्टियों की, उन शानदार यादों की, उन डेस्टिनेशंस की जहां हम जाना चाहते हैं या कभी गए थे। हो सकता है आपकी गर्मी की छुट्टियां अब नहीं पड़ती क्योंकि आपने जो है स्कूल खत्म कर लिया है, आपकी स्कूल की पढ़ाई जो है अब ख़त्म हो चुकी है, आप कॉलेज में हैं, आप ऑफिस में हैं, आपकी जो है आप जॉब कर रहे हैं। हाँ, वहाँ गर्मी की छुट्टी नहीं होती, लेकिन बच्चों की गर्मी की छुट्टी होती है स्कूल में, और इन छुट्टियों पे वो ज़रूर कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, जाना पसंद करते हैं, जाने की इच्छा रखते हैं। आप भी रखते होंगे जब आप छोटे होंगे। और हमारे वक्त पे तो मुझे याद है कि सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन होते थे गांव जाना, नानी के घर जाना या दादी के घर जाना, गांव जाके बस वहाँ मज़े करना, दिन भर यहाँ से वहाँ धूम मचाना, और जो है ढेर सारा लाड प्यार जो हमें हमारे बुज़ुर्गों से मिलता था उसे खुद को खुश कर लेना।

10 बज के 25 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त मैं शुचिश्मिता आप सबके साथ नॉन स्टॉप गपशप में बातें हो रही हैं आप क्या मेरी और साथ में गर्मी की छुट्टियों की गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाना एक बेसिक ट्रेंड है जो हम सब फॉलो करते हैं। अगर हम ज़्यादा दूर न जाना चाहें किसी रिलेटिव के घर जा सकते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन अगर आप थोड़ा सा जो है लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं बच्चों की छुट्टियों के वक्त, मानो आपको भी थोड़ी सी छुट्टी मिल जाती है। और अभी तो इतना कॉम्पिटिशन का वक्त है कि छुट्टियाँ मिलनी ही बहुत मुश्किल है, उसमें अगर आपको थोड़ी सी छुट्टी फुर्सत मिल रही है तो बिल्कुल आप कहीं घूमाएं, ज़्यादा दूर ना जाएं, आसपास ही जाएं। आसपास जाने का मन नहीं कर रहा, बस थक गए हैं आसपास के लोकेशन से, लोकेलिटी से, तो कहीं दूर निकल जाए। और जो है इन गर्मियों के मौसम में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन अगर कुछ होता है तो वो थोड़ी ऐसी जगह जहाँ थोड़ा बर्फ़ हो, थोड़े ठंडे ठंडे पानी हो, और या फिर ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा शांत हो, ऑफबीट हो। आप ऐसी जगहों को जो है ढूंढ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इन गर्मियों में। और साथ में अगर फैमिली है, थोड़ा सा वक्त एक क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ बिताना एक अच्छा मौका होता है, एक अच्छा तजुर्बा होता है।

और बस अपना बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं। अब डिपेंड करता है, ऐसा घूमना आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहेंगे या नहीं, जहां आपको डेस्टिनेशन का शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो भी, लेकिन वहां आप कमरे कैसे लेंगे, रूम क्या मिलेगा, कैसे जगह आप ठहर पाएंगे, कहां कब आप पहुंच पाएंगे। ऐसे में साथ में फैमिली को ले जाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन घूमने का ये तरीका भी बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर गर्मी की छुट्टी है और आप कहीं जाना चाहते हैं तो थोड़ा मौसम का ध्यान रखते हुए किसी ऐसे जगह पे निकल जाएं जहां बस आप हो, आपकी फैमिली हो और बस थोड़ा सा क्वालिटी टाइम हो, जहाँ आप जो है अपने फैमिली के साथ वक्त बिता पाएँ, अपने अच्छे पलों को जी पाएँ, थोड़ी सी नज़दीकी अपने घर वालों के साथ और बना पाएँ। ज़रूरत हो तो अपने फ़ोन को थोड़ा साइड रखिए और एक दूसरे से जो है रियल कन्वर्सेशन में जो है जुड़ जाइए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खुशनुमा बन जाती है।

तो नुस्खे कुछ यूँ हैं कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने साथ जो है अपना फर्स्ट एड बेसिक मेडिसिन लेके जाएं, अपनी दवाइयों को ज़रूर कैरी करें। जो बेसिक दवाई होती है कहीं अगर चोट लग गया तो, जैसे आप कुछ लगा पाए ऐसे पेन किलर ले लें, या फिर ऐसी चीज़ें जो साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप बहुत ऊँचाई पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने साथ कपूर रखें। कहीं आप बाहर जा रहे हैं मतलब बस में बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना है तो थोड़ा सा अपने साथ अजवाइन रख लें, या फिर ऐसी चीज़ें रख लें जो आंवला रख लें जो आपको थोड़ा सा रिलीफ दे।

0: अपने साथ ORS के पैकेट्स रख लें, छोटी सी फर्स्ट एड किट रख लें, ज़रूरी दवाइयाँ अलग पाउच में रखें। साथ में अगर आप घूमने जा रहे हैं कहीं ऑफ विट जगह पे, तो अपना पावर बैंक चार्जर ज़रूर साथ ले जाएं। और साथ में जो है नुस्खों में ये बात तो ज़रूरी है कि अपनी पहचान पत्र साथ ज़रूर रखें, और अगर आप समुद्र के पास जा रहे हैं तो थोड़े आराम से लाइट कपड़े रखें। अगर आप कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं, बर्फ़ में जा रहे हैं, तो मौसम के हिसाब से जो है कपड़े ज़रूर रखें। नुस्खा जो आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगी कि घर से निकलते वक्त थोड़ा सा कुछ खा के निकले, बिल्कुल भूखे पेट घर से बाहर ना जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है आप अगर बहुत ट्रैवल करने वाले हैं तो, लेकिन लाइट खाना ही एकदम खा के निकलना है, भूखे पेट घर से नहीं निकलना है। ज़रूर साथ में जो है हमें साथ रखिए, रेडियो को साथ रखिए, गाने बजते रहने चाहिए, तब जो है सफ़र का मज़ा और ज़्यादा आता है।
1: एक चुटकी नुस्खे,

0: काजल
1: मामा सब सुने चो
0: हाँ सुने ची
1: आमी कुनो भूल कोरी नी तो
0: जानी ना रे कुन्ता ठीक कुन्ता भूल ठीक जानी ना
1: एकी तुमार चोखे जल की देखछो अमन करे
0: तुई कत बड़ हो गेछिस रे काजल कत बड़ तोर आमी नागाली पाच्छी ना
1: मामा।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, तीन का तड़का की जो दीवानगी है वो तो हमारे सर पर चढ़कर बोलने लगी है और हम और आप साथ आ बैठे हैं, इस पार हम और उस पार आप। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपके कदम थिरकेंगे और दिल भी धड़केगा तीन का तड़का में, आपकी दोस्त सविता के साथ। लेकिन आइए, शुरुआत तो हो चुकी है गीत से, लेकिन परियोजना प्रस्तुति की भी कुछ चर्चा हो जाए। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक योजनाओं में से आज हम एक योजना की बात करने जा रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल में लागू होने का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू होने के साथ ही राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत पात्र जो होंगे परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर अपना नाम जांच सकते हैं और ओटीपी आधारित प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण गरीब परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक इस योजना के लाभ के पात्र होंगे। और दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ये जानना होगा कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं। तो आयुष्मान कार्ड भारत योजना की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके जरिए आप यहां लॉगिन करें। आप सबसे पहले मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप पर वेबसाइट लॉगिन करके अपना जो एलिजिबिलिटी चेक है वो कर लें। उसके बाद आप अपने मोबाइल में आयुष्मान भारत ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आपकी योग्यता के आधार पर अगर आपका नाम है तो तत्काल यहीं से आवेदन आप कर सकते हैं। और दोस्तों, आयुष्मान कार्ड के लिए योग्य जो ग्रामीण परिवार हैं, जैसे कि एक कमरे वाले मिट्टी के घरों में रहने वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 साल की उम्र तक कोई एडल्ट सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार, ऐसे परिवार जिनमें एक विकलांग सदस्य है लेकिन कोई गैर विकलांग एडल्ट नहीं है, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 साल की उम्र का कोई एडल्ट पुरुष भी नहीं है और मेहनत मजदूरी पर निर्भर भूमिहीन परिवार इस स्कीम के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि सीनियर सिटीज़न के लिए आयुष्मान कार्ड में 70 साल से ज़्यादा उम्र के सभी सीनियर सिटीज़न इस स्कीम के फ़ायदों के लिए एलिजिबल होंगे। जो लोग पहले से ही दूसरी सरकारी हेल्थ स्कीम के तहत कवर है वे अपने मौजूदा प्लान में बने रह सकते हैं या PMJAY में शामिल हो सकते हैं। प्राइवेट या ESI हेल्थ इंश्योरेंस वाले सीनियर सिटीज़न भी PMJAY फ़ायदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंतर्गत जो मिलने वाली सुविधाएं होंगी इसमें आयुष्मान भारत योजना लागू करना, सीमा सुरक्षा, इसके अलावा जो और भी योजनाएं लागू होने वाली हैं उसमें है सीमा सुरक्षा बल को बॉर्डर फेसिंग के लिए ज़मीन देना, सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट देना और भारतीय न्याय संहिता को लागू करना शामिल है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उज्ज्वला जैसी केंद्रीय योजनाएं भी आपके यहाँ यानी पश्चिम बंगाल में लागू होने जा रही हैं। तो हम धीरे धीरे सभी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल तो हमने आपके सामने जो परियोजना प्रस्तुति दी वो थी आयुष्मान भारत योजना। तो सुनकर आपके मन का मयूर नाच उठाए ना। जी हाँ, यदि आपको मेडिकल हेल्थ के लिए कोई परेशानी है तो चिंता करने की भला क्या बात, आपके लिए आयुष्मान भारत लागू हो ही गई है।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है 107 FM रेनबो पर। और एक येलो वार्निंग आपको दे दें, यानी एक मौसम की जानकारी है कि अगले 2 से 3 घंटे के दौरान पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के सम कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार के साथ हल्की से मध्यम तर तेज हवाएं चलने की संभावना है, और उसके साथ बिजली की कड़क के साथ बारिश, हल्की बारिश होने की भी संभावना है। तो दोस्तों, ये थी येलो वार्निंग। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाएंगे एक और गीत।

जी हाँ दोस्तों, कृष्णा कॉटेज का ये मेलोडियस सॉन्ग, मधुर आवाज़ श्रेया घोषाल की, और इसके जो रोमांटिक बोल हैं वो सच में

0: दिल को छूते हैं और अनु मलिक ने इसे अपने संगीत से शानदार तरीके से सवारा है। दोस्तों ये गीत हमने सुना कृष्णा कोटे से, और फिलहाल हम कौन सा गीत सुनने जा रहे हैं तो वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आज के दिन के सेगमेंट की ओर चलें।
1: आज के दिन,
0: जी हाँ, आज के दिन के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और 13 मई 1943 को जन्म हुआ था एक बेहद ही खूबसूरत आवाज के मालिक, किसका? मनहर उदास का। जी हाँ, मनहर उदास और पंकज उदास दोनों की ही आवाज़ों से आप होंगे वाकिफ। केशु भाई उदास और जीतू बहन उदास के घर जन्मे 3 बेटों में मनहर सबसे बड़े। मनहर उदास की शुरुआती शिक्षा गुजरात में हुई। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और काम की तलाश में आ गए वो मुंबई। दोस्तों मुंबई में आने के बाद मनहर ने गाने के लिए मौका मिलने की तलाश में वो आए थे, लेकिन उन्हें गाना गाने का मौका कैसे मिला इसकी भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। मनहर उदास और निर्मल उदास 3 भाइयों में मनहर उदास सबसे बड़े। मनहर उदास, पंकज उदास और निर्मल उदास। मनहर की आवाज़ में मुकेश की झलक शुरुआती दिनों में काफ़ी मिलती थी। फिल्म अभिमान के गीत में मनहर उदास ने लता मंगेशकर के साथ गाना गाया था। गाना था लुटे कोई मन का नगर, और कई दिनों तक लोग समझते रहे कि ये आवाज़ मुकेश की है, लेकिन फिल्म अभिमान के इस गीत में मनहर उदास ने लता मंगेशकर के साथ गाना गाया और बाद में लोगों को पता चला कि ये आवाज़ तो मुकेश की नहीं, मनहर उदास की है, जो कि एक नए गायक के रूप में आए हैं। और इनके बारे में हम और भी ढेर सारी आपको जानकारी देने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाज़ में आपको एक

जी हाँ, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, अब आप बदले ना बदले, लेकिन मौसम का मिजाज तो लगातार बदलने जा रहा है और ऐसा लगता है कि इसकी संभावना लगातार बनी हुई भी है। तो अभी अभी हमने आपको येलो वार्निंग दी थी, फिलहाल हम आपको ऑरेंज वार्निंग दे रहे हैं। जी हाँ, आज के दिन 3:24 से लेकर अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बीरभूम मुर्शिदाबाद जिलों के कुछ भागों में 40 से 50 किलोमीटर की तेज हल्की से मध्यमतर और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है और उसके साथ मध्यमतर गरज के साथ बिजली भी चमक सकती है और तेज हल्की बारिश भी होने की संभावना है। तो ये थी मौसम की जानकारी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और हम बता रहे थे मन्नार उदास जी, आज के दिन उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अभिमान फिल्म के गीत लूटे कोई मन का न मन, इस गीत को जो जब गाया और उसके बाद उन्हें जाना जाने लगा और उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। 450 हिंदी फिल्मों के गीतों ने में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। तू कल चला जाएगा, गली गली में त्रिदेव फिल्म का ये गीत, जान ओ मेरी जान, जान फिल्म का गाना और प्यार करने वाले हीरो फिल्म का गाना, सौदागर का सौदागर, देर से जल आना जल्दी जाना खलनायक फिल्म का ये गीत, इन तमाम फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी और इस तरह से एक लड़का जो मन में सपने लेकर आया था एक गायक बनने के उनके वो ख्वाब जरूर पूरे हुए। तो वो कहते हैं ना कि दिल में यदि आपके सचमुच में किसी चीज़ की इबादत है तो वो इबादत खुदा भी सुनता है। सुनते हैं मन्नार उदास और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अभिमान का एक गीत।

अच्छा दोस्तों, कितनी अजीब सी बात है ना कि यदि कोई हमारे दिल की चोरी कर ले तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। कोई हमारे दिल को यानी हमारे मन के नगर को लूट ले तो हम खुश हो जाते हैं, वरना ऐसे चोरी भला किसको पसंद है। दोस्तों अभी आप फिलहाल जो दोपहर का वक्त होता है ना, आप थोड़े से रिलैक्स के मूड में होंगे, क्योंकि सुबह और शाम का वक्त तो एक बेतहाशा रफ्तार में ज़िंदगी दौड़ने लगती है सुबह से ही, और शाम को घर वापस जाने की जल्दी होती है। और हो भी क्यों ना, हम अपने प्रियजनों को जिनको कि सुबह सुबह टाटा बाय बाय करके आए हैं और जो घर पर हैं, जो हमारी चिंता कर रहे हैं, उनके पास जाना तो बनता ही है जल्दी से जल्दी। लेकिन दोपहर के वक्त हम में से कई लोग हैं जो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, हो सकता है यदि घर में घर पास में ही है तो दुकान वुकान बंद करके आप रेस्ट करने चले जाते होंगे, या फिर अपने जो वर्क प्लेस है वहीं पर आराम से थोड़े से बैठे होंगे सुकून में, और हम है ना आपके साथ आपके सुकून में कुछ वक्त बिताने के लिए। और आपकी दोस्त सविता FM रेनबो पर लेकर आ गई है तीन का तड़का। तो तीन का तड़का की जो वक्त है करीब करीब 45 मिनट बीतने को है, यानी अभी हम हैं आपके साथ 16-17 मिनट, और कुछ गाने भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले दे देते हैं आपको बॉलीवुड न्यूज़। जी हाँ, कांस 2026 में रीजनल फिल्मों का बजेगा डंका और प्रीमियर

सात फिल्में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में से कांस हल्के सालों में इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए एक काफ़ी ही खास साबित हुई है, क्योंकि 12 मई से 23 मई के बीच होने वाले इस 79वें संस्करण में वो भाग लेने जा रहा है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में का आगाज़ तो हो ही चुका है। वैसे तो हर साल फ्रेंच रिवेरा की इन गलियों में भारतीय सितारों और फिल्मों का जमावड़ा लगता है, लेकिन पिछले कुछ साल हमारे फिल्म मेकर्स के लिए ये एक गोल्डन एरा से कम नहीं रहा है। दोस्तों, शौनक सेन की ऑल दैट ब्रीथ्स, नीरज खेवान की होम बाउंड और पायल कपाड़िया की ऐतिहासिक जीत के बाद अब भारतीय सिनेमा की धमक और भी गहरी हो गई है। इसके साथ पंजाबी, मलयालम, गुजराती, कन्नड़ सिनेमा की भी सशक्त मौजूदगी वहाँ दिखेगी। यानी ये कहना भी सही है कि इस बार कांस में भारतीय कहानियों की विविधता का जश्न मनाया जाएगा। इसके अलावा जो खास सुर्खियां बॉलीवुड न्यूज में हैं वो है, मंडे टेस्ट में दमदार साबित हुई कृष्णा अवतारम, पांचवें दिन हुई शुक्रवार से भी बेहतर इसकी कमाई। और दोस्तों, एक खास और खबर आपको दें कि रणवीर सिंह बनेंगे मेलुहा के शिव। जी हाँ, मेलुहा एक वह है, उपन्यास है जिसे लिखा है अमिश त्रिपाठी ने, और इस किताब के रॉयट्स भी खरीदे हैं धुरंधर के जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उन्होंने। रणवीर सिंह अब अपने कैरियर के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट की तैयारी में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अमिश त्रिपाठी के चर्चित नोवेल मेलुहा के मृत्युंजय के राइट्स खरीद लिए और फिल्म में भगवान शिव का किरदार निभा सकते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सही स्केल पर बना तो बॉलीवुड की एक बड़ी माइथोलॉजिकल फिल्म ये बन सकती है। धुरंधर की कामयाबी के बाद रणवीर आजकल आगे की प्लानिंग में जुट गए हैं और नए बॉक्स ऑफिस कद को सूट करने वाले किरदार की तलाश के साथ उनकी मेलुहा के मृत्युंजय की बड़ी स्क्रीन पर लाने के मूड को बनाने में आगे जुट गए हैं। इसके अलावा एक और फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लेकिन वो कौन सा है बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो केके की आवाज़ में एक गीत।

जी हाँ दोस्तों, तड़के से भरी ये म्यूजिकल आफ्टरनून कैसी लगी? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ गुफ्तगू करने में, और ये खूबसूरत नगमे भी सुनने में। बात हम कर रहे थे कि एक और बॉलीवुड फिल्म है जिसका कि ट्रेलर आ गया है, चांद मेरा दिल। जी, अनन्या लक्ष्य की फिल्म का ये ट्रेलर खूब लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, और यह ट्रेलर रोमांस के साथ साथ ड्रामा और एक्शन से भी भरा हुआ है। दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर से पता चल रहा है कि यह एक रोमांटिक ड्रामा है, और इसका टीजर भी पहले आया था, लोगों को पसंद आ रहा है। अब देखते हैं फिल्म लोगों को कैसी लगती है। फिलहाल हम सुनेंगे के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में एक गीत, और फिर उसके बाद एक और गीत बैक टू बैक सुनवाएंगे आपको।

जी हाँ दोस्तों, आपका दिल तो प्यार में डूब गया है, लेकिन फिलहाल मेरा मन डूब रहा है घड़ी की सुइयों में अटका हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, आपसे लेनी जो विदा है और 5:20 पर चाय एंड क्लासिक्स FM गोल्ड 100.1 पर मैं मिलने वाली हूँ। तो आप कहीं जाइएगा मत, मैं भी चाय पीकर बस थोड़ी देर में आने वाली हूँ और 7 बजे छाया लोक में भी हम साथ साथ होंगे। तो मुलाकातें होंगी 107 FM रेनबो पर 7 बजे छाया लोक में। आप बिल्कुल मुझे निराश नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, हमें सुनते रहिए। फिलहाल के लिए तो दीजिए आपकी दोस्त सविता को इजाजत। और आपके पहले पहले प्यार की यादों के मैं आपको मैं डुबोते हुए चली जा रही हूं।

107 FM रेनबो पर आप सभी का स्वागत करती है दोस्त सविता। जी हाँ दोस्तों, आने वाले का कैसे इस्तकबाल करें, कैसे आगाज करें, मन में बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन फिलहाल तो एक ही बात दिमाग में क्लियर है कि छाया लोक है और छाया लोक में सिर्फ और सिर्फ गाने हैं और कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हैं। तो शुरुआत कर देते हैं गाने से।

जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका ये दोस्त सविता एक आप सभी का करती है इस्तकबाल और आगाज अभिनंदन। हम रहेंगे पूरे 2 घंटे साथ में छायालोक में, और आज साथ साथ छायालोक में क्या खास बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपके मन में ये विचार आ ही रहा होगा और सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज क्या टॉपिक है और किस पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ खास बातें ऐसी करने वाले हैं कि कुछ ऐसे किस्से होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं फिल्मों में जो फिल्म को लोकप्रिय बना देती हैं, और एक फिल्म को रोचक, लोकप्रिय, सफल, संदेशवाहक बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनको कि अपना कर के ही उन्हें लोकप्रिय यानी हिट बनाया जाता है। यानी जैसे कहानी हो गई, संवाद हो गए, गीत हो गए, संगीत हो गया, अभिनेता अभिनेत्री हो गए, या फिर फिल्म के कुछ खास दृश्य हो गए। कुछ ऐसे ही किस्सों, कहानियों के साथ, कुछ खास बातों के साथ आज हम बात करने वाले हैं छायालोक में।

जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो पर छाया लोक में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। और मेरी आवाज़ सुनकर तो आप सभी समझ चुके होंगे, आपका एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है और प्यार भरे नमस्कार के साथ। दो गाने तो मैं सुनवा ही चुकी हूँ ऑलरेडी, और आज साथ साथ में हम यूजुअल बात नहीं करने वाले, कुछ अलग सी बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं साथ साथ रहने से एक फिल्म को सुपर डुपर हिट कर देते हैं। बॉलीवुड फिल्मों की कहानियों पर अक्सर चर्चा होती है और कहते हैं कि यदि फिल्मों की जो कहानी है, स्टोरी लाइन है, वो बढ़िया हो तो फिल्में हिट हो जाती हैं। इसी एंगल में कई एंगल और जुड़ जाते हैं जिसके कारण ऐसा होता है कि फिल्म काफ़ी चलने लगती है। अब इसमें मैं बताने वाली हूँ कि बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी बनी जो कि पूरी कहानी सिर्फ एक लाइन में ही थी। मज़ेदार बात है ना जी, कि जब भी ये फिल्में बनी बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने तहलका मचा दिया। और आज मैं जिन तीन फिल्मों की बात करने वाली हूँ, जी हाँ, जिसमें एक ही लाइन में पूरी कहानी थी, वो किसकी थी और कौन सी वो फिल्में थीं। साथ में आपको इतना भी हिंट दे दूं कि ये जो फिल्में थीं वो एक सुपरस्टार की ही फिल्में थीं। बताने वाली हूँ, लेकिन पहले चलिए सुनवा देती हूँ आपको गीत एक।

दोस्तों छायालोक में मैं सविता और बात कर रही हूँ कि बॉलीवुड में कई कहानियों पर चर्चा होती है और कई बार ऐसी भी फिल्में बनी जिन्होंने एक ही लाइन में पूरी की पूरी कहानी कह दी और इसमें तीन तीन फिल्में ऐसी बनी जिसमें कि सुपरहिट तो हुई और उसके साथ जुड़े हुए थे सुपरस्टार आमिर खान। जी हाँ, आमिर खान ने एक बार अपने इंटरव्यू में खुद खुलासा किया था कि उनके पिता ताहिर हुसैन राइटर से फिल्म की कहानी सिर्फ एक लाइन में सुनाने के लिए कहते थे और वो कहते थे कि पूरे 3 घंटे नरेशन के बाद वो सिर्फ कहानी चाहते हैं कि एक ही लाइन में सुना दी जाए ताकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा पैदा ना हो। और इसी खूबी का इस्तेमाल किया आमिर खान ने आगे बढ़कर और उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में एक जो कहानी है दंगल की है। दंगल फिल्म की कहानी सिर्फ एक लाइन की है और वो क्या है लाइन बताऊं? हमारी छोरियां छोरों से कम के हैं। बस सिर्फ एक लाइन की थीम पर पूरी फिल्म बन गई। आमिर खान ने अपने इंटरव्यू में बताया कि आप इस फिल्म में क्या कहना चाहते हैं, आपकी एक लाइन में कहानी क्या है, अगर आप इस एक लाइन में कहानी नहीं बता सकते तो ये फिल्म आपको कंफ्यूज करेगी। दंगल सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्म थी जिसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया था और एक

के दौरान एक एपिसोड में आमिर खान ने फोगट बहनों यानी गीता फोगट, बबीता फोगट से मुलाकात की थी। हरियाणा के छोटे से गांव से वो आती हैं। महावीर फोगट के संघर्ष की कहानी को पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। और दिलचस्प बात ये थी दोस्तों कि आमिर खान ने शुरुआत में इस फिल्म के लिए इनकार कर दिया था। दंगल फिल्म में साक्षी तंवर, आमिर खान, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा लीड रोल में नजर आए थे। म्यूजिक प्रीतम का था और गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य। तो दोस्तों ये फिल्म थी जिसने कि इतिहास भी रचा था। 20 करोड़ के बजट में बनी दंगल मूवी ने वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ की कमाई की थी और यह बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, दंगल। जी, बात मैं कर रही हूँ इसी की। और चलिए पहले इसका गीत आपको सुनवा देते हैं और फिर इसी तरह की एक और फिल्म थी जो खुद आमिर खान ने ही बनाई, वो कौन सी फिल्म थी उसकी भी बात करेंगे।

छाया लोक में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, बात हम कर रहे हैं कि वो कौन सी फिल्में थी तीन जो आमिर खान ने वन स्टोरी लाइन में ही सुपर डुपर हिट की थी। और उनमें हमने बात की दंगल की, इसके अलावा जो एक और उनकी फिल्म थी वो थी दूसरी 2001 में रिलीज़ हुई लगान फिल्म। जी हाँ, एक फिल्म की कहानी भी सिर्फ एक लाइन की थी। इस फिल्म के बारे में आमिर खान कहते हैं कि लगान फिल्म जब तक जिंदगी तब तक उम्मीद का मैसेज देती है, इंसान को आखिरी दम तक हार नहीं माननी चाहिए। वैसे इस फिल्म की कहानी सिर्फ 5 मिनट में डायरेक्टर आशुतोष गावितकर ने आमिर खान को सुना दी थी। जी हाँ, ये कहानी, ये लगान फिल्म जो मैसेज देती है वो ये कि जब तक जिंदगी तब तक उम्मीद। हालांकि आपको बताऊं कि इस फिल्म को भी शुरुआत में आमिर खान करना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने इनकार कर दिया। जब आमिर खान किसी तरह फिल्म बनाने के लिए तैयार हुए तो जावेद अख्तर के पास पहुंचे। स्क्रिप्ट पढ़कर जावेद अख्तर साहब ने भी इसको, इस फिल्म को ना करने की सलाह दी। आमिर खान ने जावेद अख्तर की बात नहीं मानी और इस फिल्म को किया, और फिर इसका परिणाम तो सामने था। मूवी मैसिव हिट रही और ऑस्कर तक पहुंची। लगान फिल्म की शुरुआती और अंतिम नरेशन अमिताभ बच्चन की आवाज़ में थी। आशुतोष और आमिर खान ने अमिताभ से कहा, तो इसमें वॉइस ओवर करने के लिए तो जानते हैं अमिताभ बच्चन साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैं जिस फिल्म में वॉइस ओवर देता हूँ वो फिल्म हो जाती है फ्लॉप। आमिर ने रिस्क लेना तय कर लिया और उन्होंने उनका वॉइस ओवर भी लिया। दोस्तों, फिल्म जब रिलीज हुई तो इतिहास रच गया। 24 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 66 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। और ऐसी ही एक ही लाइन में पूरी स्टोरी को बयां कर देने वाली आमिर खान की तीसरी फिल्म थी। कौन सी? जी हाँ, बताने वाली हूँ, लेकिन पहले लगान फिल्म का गाना तो आपको सुनवाती चलूँ।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक, और तीसरी फिल्म की जिसकी मैं बात करने वाली थी वो थी इस लिस्ट की आखिरी नाम पीके फिल्म। जी हाँ, 2014 में आमिर खान की ये फिल्म रिलीज़ हुई। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी थे, विधु विनोद चोपड़ा प्रोड्यूसर थे, और कहानी अजिताव जोशी और राजकुमार हिरानी ने लिखी थी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी भी एक लाइन की थी, सबका मालिक एक है। सिर्फ एक लाइन की कहानी को फिल्म के तौर पर डेवलप किया गया था, जिसमें बताया गया था कि भगवान से मिलने के लिए किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। फिर इस मैसेज के साथ बनाई गई फिल्म 122 करोड़ के बजट में बनी पीके मूवी ने 13 दिन में ही कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म ने 792 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म हिट हुई।

जी हाँ दोस्तों, अब हम थोड़ी सी अलग बात करने वाले हैं। जी, बात की थी अभी तक हमने कि एक ही लाइन में पूरी स्टोरी लाइन स्टोरी बता दी जाती है फिल्म की। अब हम चलेंगे उस ओर जहाँ पर कि आजकल मुद्दे बड़े गरम गरम हैं। जी, बात कर रही हूँ राजनीति की। राजनीति के कई एक ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा सुर्खियों में टॉप रहते हैं। ऐसे में कई टॉपिक पर हिंदी फिल्में समय समय पर बनती आई हैं, जिसके चलते कई फिल्मों का निर्माण हुआ। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटिकल एजेंडों पर बनी जो फिल्में थीं वो कौन कौन सी थीं और पसंद की गईं हमारे दर्शकों के द्वारा। आप भी यदि कुछ शेयर करना चाहते हैं ऐसी फिल्मों के बारे में कि जो राजनीतिक मुद्दों पर बनी, फिलहाल में भी बनी और पहले भी बनी, तो आप बात कर सकते हैं हमारे साथ। फ़ोन लाइन पर आ सकते हैं और नंबर है 2213134141। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और यदि ऐसी किसी फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे कि हम सुनवाएं। फिलहाल तो मैं बात करने वाली हूँ, ऐसी बड़ी मूवीज़ हुई, 1973 में एक फिल्म आई थी गरम हवा। दोस्तों, डायरेक्टर M.S. सत्यु के निर्देशन में बनी फिल्म थी गरम हवा, जो कि जिसमें बलराज साहनी ने अभिनय किया था। और यह विभाजन यानी पार्टीशन के बाद जो हालत हुई थी, जो दुर्दशा हुई थी, उसको दिखाया गया था। राजनीति के गंभीर मुद्दे पर ये फिल्म बनी थी। राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फिल्म बनने पर नेशनल अवार्ड भी इस फिल्म को मिला था। फिलहाल में साउथ सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर मणि रत्नम की फिल्म, आप समझ ही गए होंगे किसकी मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ, दिल से की बात कर रही हूँ, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। उस समय की आतंकवाद और उत्तर पूर्वी की जो घटनाएं थीं उसको बयां करती ये फिल्म थी। फिल्म में शाहरुख खान, मनीषा कोइराला और प्रीति जिंता ने काम किया था। इसके अलावा 2000 में एक फिल्म और आई थी, कौन सी ये आप भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरा दिल कर रहा है कि फिल्म दिल से का गीत आपको सुनवाऊं।

0: जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ ब्रेक के बाद आपकी दोस्त सविता एक बार फिर से हाजिर हो चुकी है छाया लोक में, और बात हम कर रहे हैं कुछ ऐसी फिल्मों की जो जिनमें कि राजनीतिक मुद्दों को लिया गया, और ऐसी फिल्में पहले भी चली हैं और दर्शकों ने उन्हें सराहा है। ऐसी बातें करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक हमारी साथ श्रोता जुड़ चुके हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ आप कौन बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं पायल बनर्जी बोल रही हूँ बेलघड़िया से।
0: पायल बनर्जी बेलघड़िया से, आपका बहुत बहुत स्वागत है पायल, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं।
1: दीदी आज के टॉपिक टा एकटु रिपीट करबे, आर तुमि केमन आछो बोलो।
0: अभी खूब भालो आची और बहुत अच्छी, आप भी रहे ऐसी ही दुआ करती हूँ। और टॉपिक हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ हिंदी फिल्में ऐसी बनी हैं जिन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज को सामने लेकर के आए हैं, है ना, कुछ जैसे कि राजनीति फिल्म बनी, फिर अभी हमने बात की दिल से की बात की, इसके अलावा अभी फिलहाल में एक मिशन कश्मीर बनी, मिशन कश्मीर में भी जो आतंकवाद की और जो कश्मीर की समस्या थी उसको पोर्ट्रे किया गया, चित्रण किया गया। तो ऐसी कोई फिल्म के बारे में यदि आप जानकारी देना चाहती हैं तो दे सकती हैं।
1: ओके, जेखने मैंने पॉलिटिकल बा राजनीति ব্যাপার গুলো ছিল তাই তো। তো দেখো দিদি, এখানে পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক ব্যাপার এখানে অনেকগুলো ফিল্মই আমি দেখেছিলাম, ঠিক আছে,
0: তো কিন্তু এখন মনে পড়ছে না
1: একদমই কিছু ফিল্ম, আমার সত্যি মনে পড়ছে না, অনেকগুলো ফিল্মে এই রাজনীতির ব্যাপার ছিল। তবে দিদি একটা, হ্যাঁ সত্যি মনে পড়ছে, তবে একটা মেসেজ।
0: चलो कोई बात नहीं, वो मैं बता देती हूँ, मैं याद करा दूंगी।
1: হ্যাঁ তো হ্যালো, হ্যাঁ তবে দিদি একটা মেসেজ আমি সব সময় দিতে চাই যে ফিল্মের মধ্যে রাজনীতি অবশ্যই আসুক, তবে সেটা যেন খুব একটা ধ্বংসাত্মক জিনিস, মানে ধ্বংসাত্মক পর্যায়ে না এগিয়ে যায়,
0: बिल्कुल। और ये फिल्में जो बनती हैं बिल्कुल, हाँ यही दिखाने के लिए बनती हैं। तो पायल तुम हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ दीदी हमें एक गान सुना तुम्हें।
0: हाँ बोलो।
1: ओके, एक प्यार का नगमा है

दिमाग में नहीं आ रहा कि वो कौन सी फिल्में थी, तो मैं एक फिल्म बता देती हूँ, मिशन कश्मीर, जो कि सन 2000 में रिलीज़ हुई। सुपरस्टार संजय दत्त और ऋतिक रोशन भी मिशन कश्मीर जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं और इस मूवी में कश्मीर की राजनीति और आतंकवाद की कहानी को दिखाया गया था। निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की ये फिल्म सफलता के मामले में खास कमाल तो नहीं की थी, लेकिन हाँ लोगों ने इसे पसंद काफ़ी किया था। दोस्तों पहले हम मिशन कश्मीर का एक गीत सुनेंगे, उसके बाद एक और ऐसी फिल्म थी जो आई और वो काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद की गई, कौन सी थी बताएंगे, लेकिन पहले मिशन कश्मीर का गीत।

जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं छाया लोक में उन फिल्मों की जिनमें कि राजनीतिक मुद्दों को शामिल किया गया या फिर उनकी कहानियाँ उन्हीं पर आधारित थी। जो आतंकवाद की सिचुएशंस थी उनको दिखाया गया और लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया। जी हाँ, 8:11 हो चुके हैं और आई एम श्योर कि आप अपने घर लौट रहे होंगे कहीं काम से, और लौटते वक्त आप सुन रहे होंगे हमारा कार्यक्रम छायालोक, या फिर घर पहुंच चुके होंगे तब भी सुन रहे होंगे, तो जुड़े जरूर रहिएगा। भले ही पहुँच कर आप हाथ मुंह धो रहे हों, कपड़े बदल रहे हों, या फिर घर में जाकर के पहुँच कर चाय की चुस्की अपने प्रियजनों के साथ पी रहे हों। हाँ हाँ, कुछ लोग लेट नाइट भी चाय पीते हैं। ये 6-7 वाले लोग नहीं, क्योंकि ये लोग लेट डिनर करते हैं, तो ठीक है, खाना खाते खाते भी सुन सकते हैं छाया लोग। दोस्तों, इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं और आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बता सकते हैं ऐसी कौन सी वो फिल्में थीं जो कि राजनीतिक मुद्दों को लेकर के बनाई गई और आपको पसंद आई। 2213-1341 पर कॉल कर सकते हैं। आपकी दोस्त सविता आपको निराश नहीं करेगी और सुनवाएगी वो गीत भी जो आप ऐसी फिल्मों के बताएंगे। मैं बताने वाली हूँ 2006 में आई आमिर खान और काजोल की फिल्म फना। ये भी रिलीज हुई थी, राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी ये फिल्म थी। इसके अलावा आई द कश्मीर फाइल्स, इकबाल और आर्टिकल 370, द केरल स्टोरी। थी ना ऐसी कितनी सारी फिल्में जो बनी ऐसे मुद्दों पर। और इसके अलावा बस्तर द नक्सल स्टोरी, तो फना फिल्म का गीत फिलहाल हम सुनेंगे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में।

0: जी हाँ दोस्तों, फिल्में हमेशा मैसेज देती हैं समाज को। कुछ भी ऐसा हो जिससे कि समाज को मैसेज दिया जा सके, अच्छा नैतिक रूप से फिल्में बनती हैं। और आर्टिकल 370 2024 में रिलीज़ हुई, ये भी एक हिंदी भाषा की राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। आदित्य सुहास जांबले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में यामी गौतम ने एक इंटेलिजेंस अफसर की भूमिका निभाई। आइए सुनते हैं आर्टिकल 370 फिल्म का ही ये गीत आंधी।
1: कितने उम्र थे? 35।

जी हाँ दोस्तों, इसी मुद्दे पर यानी राजनीति के मुद्दे पर 2010 में आई एक प्रसिद्ध बॉलीवुड राजनीतिक ड्रामा फिल्म, निर्देशन प्रकाश झा ने किया। ये फिल्म भारत की राजनीति, लोकतंत्र की गहरी परतों को दिखाती है। बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसने अच्छी कमाई की, करीब 145-46 करोड़ से अधिक की कमाई की। और मुख्य भूमिकाएं इसमें निभाई थी रणवीर कपूर, अजय देवगन, नाना पाटेकर, कैटरीना कैफ, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी, नसरुद्दीन शाह ने। ड्रामा, सस्पेंस, राजनीति, सब कुछ तो था इस फिल्म में। किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, राजनीति की ही बात कर रही हूँ।

जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार अपने अपराध बोध से दब जाते हैं और पूछने लगते हैं कि खुदा बता क्या है मेरी खता। लेकिन दोस्तों, उदास या निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी में कहीं कोई गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप करने से ही, कहते हैं ना, माफ़ी मिल जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे हमारा शो भी अपने मुकाम पर आ पहुंचा और कार्यक्रम के अंत में दिल करता है कि कुछ अलग तरह के गीत सुनवा दूं। जी हाँ, रफ्ता रफ्ता हम अपने मुकाम पर आ गए हैं, तो एक और गीत।

0: अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। दोस्तों, कोई हमारे दोस्त जुड़ना चाहते हैं तो लेते हैं हम ऑन एयर। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका नाम बताइए।
1: बावरिया बोल रहे थे, शांतनु घोष बोल जी।
0: शांतनु घोष जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: हमें दीदी दिल जले का एक गान सुनते है, शाम में धुआं धुआं।
0: किस फिल्म का?
1: दिल जले।
0: दिल जले
1: है।
0: अच्छा, हमारा तो शो खत्म होने के मोड़ पर है तो
1: आना दीदी, आपने पसंद हो तो एक सुनिए देवन।
0: हाँ, मैं अपनी पसंद का तो सुना ही रही हूँ तब से लेकिन यदि पहले आपके साथ जुड़ जाती तो शायद मैं सुना पाती। आपने कौन सा गाना बताया?
1: शाम है धुआं धुआं।
0: शाम है धुआं धुआं। चलिए मैं आपको आपकी पसंद का गाना सुनवाती हूँ और शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी। शुक्रिया। दोस्तों, हमारे दोस्त सुनना चाहते हैं फिल्म दिल जले का गीत, तो हम सुनवाएंगे लेकिन पहले बजरंगी भाईजान का ये गीत।

0: कुछ तो बताए ज़िंदगी। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम जिंदगी में कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि कौन सी चाल चलें, किस सफ़र पर चलें, किसके साथ चलें। मगर फिलहाल तो घड़ी की सुइयां मुझे इशारा कर रही हैं कि अब आपका जाने का वक्त आ गया है। और हाँ, जाने से पहले आने का वादा ज़रूर करूंगी। 18 तारीख को सुबह के कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप पर आपके साथ आपकी दोस्त सविता की मुलाकात ज़रूर होने वाली है। लेकिन जाने से पहले
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
3: दिल जले।
0: तो दोस्तों, शांतनु जी ने हमसे फरमाइश की थी कि उनकी पसंद का गाना सुनवाऊं, तो जाने से पहले ये वादा तो जरूर निभाऊंगी। और आपका इंतज़ार 18 तारीख को ज़रूर होगा। छाया लोक में मैं थी आपके साथ 107 FM रेनबो पर सविता। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। शुभ रात्रि, शब आखिर, गुड नाइट। चलते चलते बस एक ही बात, तुम इसी मोड़ पर हमें मिलना, लौट कर हम जरूर आएंगे।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई चोट कर दूंगा। सज्जम सकजम सकनम सकदम सत्संगित सत्संगित सत्सज्जम सकदम सकनम सकदम सत्संगित सत्संगित सत्सज्जरि सदन सज्जनु सदनु सज्जनि सदनि सज्जनु सत्सज्जरि सदन सज्जनु स

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात।

0: टी कैट, कैट माने बिल्ली, आर ए टी रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
1: ए मेड मैड, मैड माने पागल, बी ओ वाई बॉय, बॉय माने लड़का, रे मतलब इसका तुमको हो तो क्या हुआ।
0: सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली, आर ए टी रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
1: ए मेड मैड, मैड माने पागल, बी ओ वाई बॉय, बॉय माने

GOAT goat, goat माने बकरी, LION lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।

0: बैड बैड माने बुरा बीयूटी बट बट माने लेकिन अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ
1: ए मैड मैड मैड माने पागल बी ए वाई बॉय बॉय माने लड़का अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ।
2: किशोर कुमार एवं आशा भोसलेर कंठे शुनलाम दिल्ली का ठक। এই ছবি থেকে একটা দারুণ সুন্দর গান সিএটি।